देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप।

बम्बई पूना झांसी। और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी। कौवा चले हंस की चाल, पहुंची गले भी कैसे दाल। कौवा चले हंस की चाल, पहुंची गले भी कैसे दाल। देखो देखो।

देर जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का तोप रे बेटा, ये लक्ष का तोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का तोप रे बेटा, ये लक्ष का तोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं दे

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

है बम्बई पूना झांसी। और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देवदार हुआ अब उखड़ रहा है मेला, आई पिया मिलन की बेला, आई पिया मिलन की।

दुनिया ढोल है। ए जी हम न कहते थे कि दुनिया ढोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ काहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
0: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे,
1: कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: ना झोल है ए जी हम ना कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: चुके अच्छे बुरे को देख चुके, कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख चुके, अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
0: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।
1: कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।

की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे।

0: तो रात अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: एक मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे,
0: कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ
1: सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे।

0: अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें।

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।

0: जान सकते इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है
0: अमर है

0: जाना करते इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीर आत्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य जिला
0: अमर है।

0: जान कदते इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य हिंदुस्तान
0: अमर है।

0: स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है
0: अमर है।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो।

0: कहानी बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: सावन में झूले पड़े, सावन में झूले पड़े, हिल मिल झुलाए हम, हिल मिल झुलाए हम,
0: प्यार भरी